अभी आप FM 100 से सुन रहे थे तिलावत कुरान पाक, तिलावत कारी वही जफर कासमी, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी, आवाज शमशाद अली खान की थी।

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: नो पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: RGF ने बैंक से बनवाए।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। दिस प्रोग्राम

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: FM 100
2: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट अजय समिया. उम्मीद करती हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और सबसे ज्यादा तो ये कि आपकी तबीयत अच्छी होगी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों अच्छी नहीं रही. अभी भी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि वाकई में सेहत और तबीयत कितनी ज्यादा जरूरी चीजें हैं. और दुनिया की दौलत हो और आपके मुंह का जायका खराब हो और आपको कुछ खाने का दिल ना चाहे, तो यू फील लाइक ओ माय गॉड, यू नो दीज थिंग्स मैटर अलॉट. और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करना चाहिए और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल भी करना चाहिए. तो सबसे बड़ी चीज, इम्पॉर्टेंट चीज सेहत है. आई होप कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे. दिस इज यू नो दिस इज लाइक डेंजरस वायरल गोइंग ऑन और आपको उस वक्त तक यकीन नहीं आता जब तक आपको खुद या आप किसी प्यारे को अल्लाह ना करिए हो. लेकिन ये कि इट इज रियल, इट हैपन टू मी. और मैं यही अब सबसे कहूंगी कि प्लीज मास्क जरूर पहने. लोग बताते भी नहीं है कि उनको बीमारी लेके घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द, और फिर आपको जब हो जाती है तो पता चलता है कि इसको दिल चाहता है उस बंदे को ऐसा पकड़ के मारो कि यार अगर तू अब एहतियात कर लेते या यू नो मास्क पहन लेते तो इतनी बंदा दूसरे बंदे को इतनी तकलीफ ना होती. और फिर के अगर ये आपके घर में आ गया तो एक से दूसरे को लग जाता है बहुत ही जल्दी. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल और अल्लाह ताला से मदद मांगे. हमेशा अल्लाह ताला ही काम आते हैं इंसान के, इंसान ने क्या आना है. और हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. तो हम जो है कुरान शरीफ का तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत का तर्जुमा. और तो फिर हम आयत नंबर 35 से पढ़ते हैं आई थिंक. या ओके. सो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. और मदियन की तरफ उनके हम कौम शोएब को भेजा तो उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और जमीन में फसाद फैलाते ना फिरो. फिर उन्होंने उसे छुटलाया तो उन्हें जलजले ने आ लिया, तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल रह गए और हमने आद और समूद को हलाक कर दिया और इनकी रिहायश के मकाम तुम्हारे लिए जाहिर हो चुके और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिए और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोका हालांकि वो समझदार थे. और हमने कारून और फिरौन और हामान को हलाक कर दिया, हमने कारून और फिरौन और हामान को हलाक किया. बेशक उनके पास मूसा निशानियां लेकर आए तो उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया और वो हमसे निकल कर जाने वाले ना थे. तो आप सुन रहे थे सूरह अनकबूत का तर्जुमा. और जब भी कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. या फिर अरबिक सीखिए, लेकिन कुरान जैसे भी पढ़े उसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए. और कुरान और अल्लाह ताला के जिक्र से ज्यादा हमारी कोई भी दौलत नहीं है, हमारी कुछ भी ताकत नहीं है. तो आपने इस ताकत को हमेशा अपने साथ रखना है और चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना है, राइट. और बच्चा पार्टी कैसी है, बच्चा पार्टी की तबीयत कैसी है. मैंने अपने जो है पक्के दोस्त गैंग को बहुत ज्यादा जो है मिस किया है. आई मिस देम अ लॉट और आई होप के बच्चे ठीक होंगे. सुबह भी मैं जब देख रही होती हूँ स्कूल जाते हुए बच्चे, तो वो सो रहे होते हैं. आप सोचें कि बच्चे बाइक में भी बड़े आराम से सो रहे होते हैं. जिनको सोना होता है वो कहीं भी सो जाते हैं, भले बाइक हो गाड़ी हो कहीं भी. और जिनको नहीं नींद आती उनको नहीं नींद आती उनको अपने बड़े से बिस्तर पर भी नींद नहीं आती. तो ये बात है. लेकिन बच्चे अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जो है ना वो जल्दी जल्दी सोना भी होगा. और ये चीजें पेरेंट्स हो या बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों का कोई फिक्स जो है वो बेड टाइम नहीं होता, या अगर है भी सो बहुत पेरेंट्स को ये बात समझना चाहिए कि ये नहीं होगा कि वो खुद टीवी देखते रहेंगे और बच्चे जो है ना वो सो जाएंगे. ऐसा नहीं होता, उनके साथ आपको टाइम देना होता है, उनको सुनाना पड़ता है, तभी कहीं जाके बच्चे सोते हैं. वरना जो है ना क्या कहता है, बिल्कुल भी भूल जाएंगे बच्चे जो है वो घंटों घंटों जागते रहेंगे जो, तो पेरेंट्स उनके साथ खुद लेट के उनको कहानी सुना के नहीं सोते. लेकिन बच्चे, यही मैं बोलूंगी कि आपकी पूरी नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट जस्ट फॉर कि आप सुबह बहुत बेटर फील करते हैं और फोकस करते हैं पढ़ाई में, इसके अलावा आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है. जो बच्चे पूरी नींद लेते हैं वो अगर खुदा ना खासा बीमार भी होते हैं तो वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी हो रही होती है. लेकिन जो बच्चे नींद जिनकी पूरी नहीं हो रही होती, जो रात
को देर तक जागते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, वो ज्यादा जल्दी बीमार भी होते हैं और स्कूल में फोकस भी सही नहीं रहता. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर बॉडी इज गेट एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम 8 to 10. बच्चों को 8 से 10 घंटे सोने की जरूरत पड़ती है. तो बच्चा पार्टी को चाहिए कि वो अच्छे से अपनी नींद ले और जो है ना अपनी नींद जो है वो पूरी करे. और हम जो है बच्चों के लिए गाने लगाते हैं, उठो बेटा, आइए सुनते हैं उठो बेटा.

जी आप सुन रहे थे गाना उठो बेटा पक्के दोस्त का, और ये हम बच्चों के लिए गाने लगाते हैं सुबह सुबह ताकि बच्चों का मूड जो है वो अच्छा रहे। और वक्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल आपके दिल के करीब ही है, और वो ये है कि आप मतलब आपकी जिंदगी के अंदर या आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा झूठ है। मेरे ख्याल से तो है जो सच्ची बात है, मुझे लगता है हर कहां हर कहीं हर तरफ झूठ ही झूठ है। जब भी आपका दिल नहीं लगता इधर कराची में तो बिल्कुल ही दिल नहीं लगता, मेरा तो नहीं लगता ऑनेस्टली। आपको लगता है एवरीबडी इज लाइंग, यू हैव दीज लाइक वाइब्स ओवर देयर। और मुझे याद है कि व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूके तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, पाकिस्तान जल्दी आई थी मैं बल्कि, और थोड़ा टाइम था मेरी पढ़ाई में, लेकिन मैं कहा नहीं नहीं मैं इन थीसिस वगैरह यहीं कर लूंगी। बट व्हेन आई लैंडेड वहां पे झूठ नहीं होता, वहां पे खैर वो कोई इतने आपसे मोहब्बत करने वाला सलूक नहीं रखते, लेकिन ये कि वहां पे झूठ नहीं है। यहाँ पे जैसे आप लैंड करते हैं आपको अजीब सा लगता है यार ये कौन सी जगह है, अजीब सी वाइब आना शुरू होती है। और वाई, बिकॉज एवरीबडी इज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज लाइंग। आप खासतौर पर अगर आप दुकानों में जाएं, आप नेगोशिएट करें, प्राइस के इतने फर्क होते हैं, वो कुछ भी आप प्राइस फिक्स है ही नहीं, सिर्फ आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा बारगेनिंग कर सकते हैं, कितनी एनर्जी कितना स्टेमिना है आपके अंदर कि अगर वो बोल रहा है कि प्राइस 500 है तो आप उसको 200 तक कैसे लेकर आएंगे, और वो ले भी आते हैं कुछ लोग। झूठ क्यों बोल रहे हैं यार, मतलब ठीक है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बोल दो इतनी प्राइस से, लेकिन नहीं, हर इंसान से दूसरे आप अगर उस इंसान के अंदर नहीं है एनर्जी आपसे नेगोशिएट करने की तो वो आप उसको बस किसी भी प्राइस से भेज दें। सो यार मतलब सच नहीं है यहाँ पे, और इस वजह से शायद हम इतने खुश भी नहीं है भाई। सच बोलना हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम बिला वजह जहां झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है वहां पे भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है सच बोलने की। और ख्वातीन का मसला है कि कभी भी आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो अपनी एज के बारे में कभी भी सच बोलेंगे, तो दैट इज लाइक उसको तो पीछे हटा ही दे कभी लोग बोलेंगे। तो अब ये है कि झूठ इतना ज्यादा है कि अगर कोई सच भी बोल रहा हो तो लोग उस पर यकीन अब नहीं करते। तो आप बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा झूठ है। इकबाल हुसैन थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, गुड मॉर्निंग आपको। प्लीज आपने मेरे आई होप मेरे लिए सब लोग दुआ कर रहे होंगे मेरी तबीयत के लिए, क्योंकि वाकई में दुआओं की बहुत जरूरत है। दवाएं तो अपने वक्त पे काम करती हैं लेकिन लिटरली दुआएं ही, मैं तो दुआओं पे यकीन रखती हूँ। खैर आप लोग मुझे मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या @आजय समिया इंस्टाग्राम पे। एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम आपका पैगाम और उसको भेज देंगे 3636 पर। और आपने हमें यह बताना है कि आपको लगता है कि क्या हमारी सोसाइटी बहुत सच्ची है या झूठी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: दिस प्रोग्राम इज

0: जी हाँ, फिर हमारे पास हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, होपफुली आपकी मॉर्निंग अच्छी जा रही होगी और आपने नाश्ता कर लिया होगा। अच्छा, और आज हम बात करें कि क्या हम लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, क्या हमारी सोसाइटी में झूठ है और है झूठ। अभी अगर आपको कोई अभी कोई आपको बंदा रोक ले पुलिस वाला और बोले कि यार ये नहीं किया वो नहीं किया, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कोई भी मसला है, तो आप या वो बंदा अगर भले आपको वार्निंग देके छोड़ भी दे, लेकिन आपने वापस से वही करना है, वही हमारी हरकतें ठीक नहीं होनी हमारी। और न जाने आई थिंक पीपल हु लाए और हु आर रिपीटेड लायर्स, आई फील दैट दे डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स या फॉर अथॉरिटी या जो भी, जिससे वो बात जिससे आप झूठ बोल रहे होते हैं, या तो आप उससे डरते होते हैं या आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब भी आप उससे झूठ बोलते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात ही है वैसे, क्योंकि और हम झूठ को इतना बुरा, इतना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं समझते, और हालांकि झूठ बुराइयों की जड़ है, ज़्यादातर बुराइयाँ जो है वो झूठ से स्टार्ट होती हैं। पाकिस्तान तो हिस्टोरिकली दुनिया में लिखा जाएगा कि वन ऑफ द मोस्ट लाइंग नेशन यहाँ पे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने हमसे, हमारे लीडर्स ने हमसे शुरू दिन से जब से पाकिस्तान बना है सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला है, झूठ बोले और आज तक झूठ बोले जा रहे होते हैं, और बड़े धड़ल्ले से, बड़े लाइक कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहे होते हैं। अभी टीवी चलाएं, कोई भी आपको मिनिस्टर, कोई भी किसी भी पार्टी का हो मिनिस्टर, और आपको पता चलेगा कि दे आर मोस्टली लाइंग। और मुझे मतलब मैं इतनी नाइव होती थी, मैं सोचती थी कि जो तकरीरें होती हैं वो जो इतने लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं खुद लिखी होती, वो खुद भी तकरीरें तक नहीं लिखी होती, यहां तक कि बहुत बड़ी बात है कि वो तकरीर करने से पहले उसे एक दफा पढ़ लें, वो पढ़ते भी नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि बस हमारा काम तो चाह के बस फीते काट के तकरीर कर देनी है हाथ खोल के। भाई यार मतलब कौन लोग हैं ये, उनको लिटरली कोई नहीं परवाह, ये सिर्फ अपनी लाइक थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स से बेटर है, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, लाइक तकरीर तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन द थिंग इज दे आर जस्ट लाइंग एंड दे थिंक पीपल आर स्टूपिड, और मुस्तकिल झूठ बोल बोल के फिर इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ओके उमेर अशरफ कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? और हाउ इज फातिमा डूइंग, फातिमा कैसी है, आपने ख्याल रखना है बच्चों का बहुत आजकल, इज लाइक द वायरल इज गोइंग ऑन, और मेक श्योर कि आपके बच्चे जो है मास्क पहने, स्पेशली बच्चे जो बाइक्स पे जाते हैं उनको चाहिए कि मास्क पहने, जरा सा भी अगर आपको शक हो कि कोई बीमार है आपके आसपास तो आपको जो है वो मास्क जो है वो जरूर पहनना चाहिए। एनीवेज तो मूड थोड़ा हम बनाते हैं और आपके लिए लगाते हैं ये ट्रैक, लेट्स एंजॉय।
1: El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

ऑलराइट जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज हम बात ये कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ झूठ है बहुत ज्यादा के नहीं। और सही तो मैं करें, झूठों का बादशाह हमारे प्यारे दोस्त मिस्टर वासिफ हसन, सिंगल एस वाले, और माशाल्लाह इस सफाई से झूठ बोलते हैं कि कभी कभी लगता है कि हम सब दोस्तों की याददाश्त खराब हो गई है, और बात बात पर पुरानी बातों से मुकर जाते हैं, लोगों को मजा आ जाता है झूठ बोलने का। हाँ जी, और वासिफ हसन साहब, क्यों आखिरकार आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो मजबूर हो गए हैं कि रेडियो पे बताएं कि आप एक झूठे इंसान हैं? कैसा लगता है आपको इतना झूठ बोलते हुए? और सीरियसली बताएं बताएं बताएं। तो ये जो है क्या कहते हैं, मतलब जरूर जरूर आप हमें बताएं। तो अगर आपका कोई झूठा दोस्त है तो आप हमें उसका नाम आज अपने झूठे दोस्त को बता देंगे, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। और झूठ सभी बोलते हैं, और अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल देते हैं लोग, बॉसेस से बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, बॉसेस को तो हर इंसान झूठा ही लगता है अपने एम्प्लॉयज। कोई सच भी बोल रहा होगा तो बॉस को झूठ ही लगेगा, आप बोलेंगे कि आप काम कर लेंगे या आपने काम कर दिया, लेकिन बॉस को लगेगा ये तो झूठा है, ये तो बस की बेकार है, इसका पूरा रेज्यूमे ही झूठा था, मुझे तो यकीन नहीं है कि इसने कभी डिग्री भी वो वाली कम्प्लीट की होगी। तो ये हमारा परसेप्शन है कि झूठ है। और लेकिन एक बात बताओ, अगर आपकी अगर आप खुद सच्चे हैं या आप हर काम सच्चाई से कर रहे होते हैं तो ऐसा सा लोगों को पता चल जाता है कि आप सच्चे हैं कि नहीं, और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये बात भी छुपी नहीं रह सकती, और लोग जो है ना वो पहचान लेते हैं आपकी आपके सच को और आपके झूठ को। तो खैर, ये हमारी बातें चल रही हैं। आबिद अमीर का मैसेज आ गया, कैसे आप आबिद अमीर? एक मैसेज पे तो रुकेंगे नहीं, है ना, जब तक मेरा शो चलेगा तब तक वो मैसेज करते ही रहेंगे। और वो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सैम, सबसे पहले बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बस ओके ही है मेरी तबीयत, इतनी कोई वाव नहीं है अभी तक। और मेरा मसला ये है कि आई कांट हैव मेडिसिन, मैं मेडिसिन ले ही नहीं सकती हूँ, आई हैव लाइक यू नो दिस लाइक इशू। अच्छा, मैं हर एक को बोलती रहती थी कि यार दवाइयों के बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं ये वो, लेकिन नाउ इज द फैक्ट कि आई कैन नॉट, आई हैव टू क्योर माई सेल्फ नेचुरली, आई कैन नॉट टेक मेडिसिन, और क्योंकि मेरे पर मेडिसिन का जो है ना बहुत ज्यादा असर होता है, फॉरन रिएक्ट करती हूँ मैं, सो इसलिए मैं मेडिसिन भी नहीं ले सकती ज्यादा। तो खैर, इसीलिए बस अब अल्लाह के हवाले है, अब अल्लाह के हवाले ही है मेरी तबीयत, वो नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगी बगैर दवाइयों के। लेकिन प्लीज आप लोग दुआ करें, मुझे लगता है कि दुआओं में बड़ी ताकत है, तो प्लीज यारों सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। और आपने मुझे टॉपिक में भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में कितना झूठ है, झूठ और दिखावा और ढोंग कितना है, और लोग बस गाड़ियां भी ले लेके रखते हैं बैंक से, बड़ी बड़ी गाड़ियां खुद लेके दिखाएं। और अगर आपके बैंक में नौकरी है तो बड़े आराम से आपको गाड़ी मिल सकती है, तो बस बड़ी बड़ी गाड़ियां। अब सोचा, अगर आपने बैंक से लीज पे गाड़ी ली हुई है तो उससे इम्प्रेस होने की क्या बात है? बंदे के पास अपने पैसों की गाड़ी हो तो हो है, बैंक से ली हुई गाड़ियां लोग ले लेके घूम रहे होते हैं उसमें, और फिर इतरा भी रहे होते हैं, सो लाइक क्या सीन है। और तो हमें खैर, आप बताएं हमें, आप मैसेज करें कि आपको लगता है कि सोसाइटी में बहुत झूठ है कि नहीं। और मैसेज करने का तरीका, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं बता देती हूँ

0: आपकी सहूलत के साथ HBL फ्रीडम मकान, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: खालिस अज्जा, भरोसे मन शिफा, श्वाबल सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबल सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। दिस प्रोग्राम इज

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ एहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
2: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
4: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
4: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
7: मैं हूं फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस वक्त वो ट्रैफिक जो महमूदाबाद सिग्नल से कॉजवे और वहां से कयूमाबाद चौरंगी की जाने जा रहा है, उस पर इस वक्त ट्रैफिक का कुछ दबाव बढ़ गया है ऑफिस टाइमिंग की वजह से। इसके साथ साथ शाहराह सेक्टर का कायदाबाद से वो ट्रैफिक जो इस वक्त मलीर सिटी की जाने आ रहा है स्लो मूव कर रहा है, और जौहर मोड़ और लियाकताबाद डाखाने से वो ट्रैफिक जो गुरु मंदिर चौरंगी और उससे आगे की जानिब जा रहा है उस पर कुछ ट्रैफिक का दबाव बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
6: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। दिस इज योर म्यूजिक।

0: एंड देबक। आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: खुबानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मेट विल हैपन।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: पेपा कार्ड है
4: तो फायदा है।

सोचते हैं। आप सुन रहे थे सजाद अली की लेजेंडरी आवाज में ये लेजेंडरी गाना चल झूठी। क्यों लगी कह रही मैं रोटियां बनाऊंगी चल झूठी। ये रोटियां वोटियां किसी ने नहीं बनानी होती हैं आजकल, ये बस ऐसी बातें होती हैं। लेकिन खैर हैट्स ऑफ टू सजाद अली जो किसी भी टॉपिक पे गाना बना सकते हैं, थे बना सकते हैं, राइट। हम बात कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर कितना सच है और कितना झूठ है। और सैम मिस में समझा या झूठा, मुझे कसम खाने की हाजत नहीं पड़ती अपनी बात बनवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कसमें खानी ही नहीं चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, कसम पूरी करनी पड़ती है। पता नहीं लोग कसम और झूठों को जाहिर है कसम खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बंदा सच्चा होता है लोग उसका वैसे ही यकीन कर लेते हैं। लेकिन सच्चा है कौन आजकल? मैं तो वाकई में ढूंढ रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में बंदा बोले कि यार ये बंदा कभी नहीं झूठ बोलता। ये एक आई थिंक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। रहीम बलोच कह रहे हैं कि जी समिया सिस्टर, हमारी सोसाइटी में आजकल तो झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं होता। लोग जानबूझकर छोटी छोटी बातों में झूठ ही झूठ बोलते हैं बिला वजह। एक होता है ना कि चलो जरूरत है कहीं झूठ बोलने की, लोग झूठ बिला वजह ही बोल रहे होते हैं, फजूल के अंदर कोई बात हो या ना हो लोग एवं झूठ बोल रहे होते हैं। खैर हमारी बातें जारी हो सारी हैं, आप भी बताएं। बुरहानुद्दीन कह रहे हैं कि समिया जी कुरान में फरमाया अल्लाह पाक के झूठ बोलने वाले पे लानतें बरसती रहती हैं, हर वक्त मुसीबतों में अजाब में रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब लोगों को उल्लू बनाने के लिए, आवाम को उल्लू बनाने के लिए बोल सकते हैं झूठ, लेकिन अल्लाह तो खैर सब देख रहा है। अल्लाह की लाठी वो होती है भी आवाज, आप पता चल जाते हो, झूठ सामने आता ही है एक ना एक दिन। झूठ के पांव नहीं होते। आप अभी झूठ बोल के अच्छा सब मसला यहाँ पे ये भी है कि सबसे ज्यादा खरीदो फरोख में भी झूठ है। लोग कहते हैं कि अगर आप कोई भी माल बेच रहे हैं उसके आप नुक्स भी बताएं कि यार इसमें ये नकायस हैं। भाई ऐसी कोई भी आप चीज, भले वो गाड़ी बेच रहा है बंदा या जमीन बेच रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप देखें बिल्कुल इसके जी पक्के कागजात हैं, झूठ होता है वो। और प्रॉपर्टी के अंदर फाइल्स, कितने लोगों का कितना नुकसान होता है इस चीज के ऊपर कि लोग लाखों रुपए लगा के फाइल्स खरीदते हैं और पता चलता है बाद में कि ये जो है वो ऑथेंटिक पेपर्स ही नहीं है। तो इसलिए बंदा डरता है, यहाँ पे कुछ भी खरीदते हुए भी डर लगता है कि यार मतलब कारोबार करते हुए डर लगता है कि आप किसी जगह कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान लगा रहे हैं, तो कहीं पे भी झूठ हो सकता है। गाड़ी के कागज सही नहीं होते और कितने लोगों को ये परेशानियां होती है, जगह के कागज सही नहीं होते, गाड़ी को आप देखें अंदर बाहर से अच्छी लग रही है, अंदर से चिपा चला कि ये चीज मिसिंग है वो चीज मिसिंग है, और उसके बाद वो बंदा गायब, उसने करना है फोन ऑफ और अब वो बंदा गायब है अपने पैसे वो करा के, ठीक है। तो फिर इसलिए जरूरी है कि आप जो है वो अपने आप को खुद ही बचाएं और लोगों पे बिल्कुल भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, यहां तक कि अपनी औलाद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आजकल के तो मामला ये हैं। और अपने इवन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जरूर ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, वसीयत बिल्कुल सही है। लोग अपने माँ बाप की वसीयत तक भी बदल देते हैं कि लिखा कुछ हो जी उनको नहीं पता जी ये वो पे कागज वो बन रहे हैं। तो अब ड्रामों में भी इस बात की अवेयरनेस दिए जा रहे हैं, इसलिए प्लीज अपने आप को बहुत ज्यादा अवेयर करें और ईमान के मामले मजबूत करें। और सच इसलिए ना बोले कि आपको हीरो बनना है अपनी लाइफ के अंदर, सच सिर्फ इसलिए भी बोलें कि अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला झूठों का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, आप अभी आप झूठ बोल के न जाने कितनी कामयाबी पा लें, लेकिन जाना तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ये नहीं है कि जी वो बस वहां पे आपका वो होगा, दुनिया में भी अंजाम है और उधर भी अंजाम है। और पता चल जाता है लोगों को कि इंसान सामने वाला कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है झूठे लोगों से ना वाइब्स ही गंदी आ रही होती हैं, भले वो कितना भी अच्छा

0: याद आया कि आबिद अमीर ने अपना ठेला ले लिया है, मुबारक हो आपका जाती ठेला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मजेदार ठेले की बात यह है कि आप अपना आपका ठेला है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। और सेकंड के बारिश के अंदर इस ठेले पे घूमने का बड़ा ही मजा आता है, आप बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल पे ठेले पे अपने बच्चों को घुमा सकते हैं। सो दिस इज कंग्रेचुलेशन ठेला, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना जाती रिक्शा ठेला या भैंस हो, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पर दम निकले। इसी बात पे लेते हैं एक ब्रेक। आप लोग मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे, आपने हमें ये बताना है कि आप एक सच्चे इंसान हैं या अगर आप गलती से किसी सच्चे इंसान को जानते हैं तो वो भी बता दें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं झूठों की।
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: 100 FM.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom account.
4: Apne tech idea ko ignite kare with Prime Minister's Spark and Elevate program, a national research and innovation funding initiative. Prototype development ke liye 10 crore rupaye tak aur kamyab prototypes ko market ready solutions mein badalne ke liye 20 crore rupaye tak funding. Apply before 26th October at segms.ignite.org.pk. Spark the idea, elevate the impact. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
1: This program

0: एंड पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहित कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। गर्देल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7/365

बुनियादी झूठ है भाई, क्या हो गया कहीं बंदा दूसरी शादी कर ले, बता ही नहीं, वो बंदा बोलेगा मैं भूल जाता यार, और वाइफ से झूठ बोलना चलता है, ऐसी बात नहीं, हिम्मत है तो बता के बंदा शादी करे ना दूसरी। ये क्या कि झूठे झूठे जी बीवी भी है और फिर पीछे और भी अफेयर्स चल रहे हैं, तो ये सच बोलने के लिए हिम्मत बड़ी चाहिए होती है। खैर पाकिस्तान में क्या करें, यहाँ तो बस सबसे कॉन्फिडेंटली कितना जो झूठ बोलता है लोग उसको ज्यादा सलाम करते हैं। आप जितने कॉन्फिडेंट जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मतलब कभी आपने मोहल्ले के काउंसलर से मिले हैं कि भाई इलेक्शन से पहले तो तुम बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अब क्या हुआ, कौन सा वादा निभाया तुमने है ये तो बताओ मुझे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ कराची के लोगों को नौकरी से आने जाने में टाइम मिलेगा तो वो अपने काउंसलर से कोई सवाल कर पाएंगे, काउंसलर्स को भी पता है कि यार अभी झूठ बोल के ले लो बाद में किसने पूछना है। लेकिन अगर आप वाकई में, और वहां बाहर ही होता है, वो बोलते हैं कि भाई फला वक्त आपने ये कहा था, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, आपने फिर वो वादा क्यों नहीं पूरा किया। ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जैसे ज़ुहरान ममदानी जैसे प्यारे खूबसूरत, वो कहते हैं यार हमने ये बात कही थी और हम ये पूरी करेंगे, हमने इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करनी है, इतने लोगों को हमने घर देना है, तो यू नो एवरीबडी मतलब वो अपनी बात को पूरा करना चाहते हैं और यही उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। यहाँ पे उल्टा है भाई, यहाँ पे कहेंगे ना गलती से कोई लीडर अच्छा काम अपने अपना वादा पूरा करेगा तो हमें कुछ अजीब लगेगा है, मतलब लिटरली ये भी हो रहा है। खैर एनीवेज तो खैर हमारी बातें जा रही हो सारी, आप भी हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या एट आजय समिया इंस्टाग्राम पे। फिलहाल हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं असरार की आवाज में ये गाना जो हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे अजीज सितार साहब को।

जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जो

0: फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: FM 247 365 FM 247 365

0: your location for maximum music.
1: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBO.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस पॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए.

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना सीएनआईसी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें. अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है. अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें. जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है. इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें. शिकायत सबमिट होने के बाद आपको ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: 11:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365.
5: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
6: connecting,
5: holding you,
6: holding
5: with FM 100.
7: FM 100.
8: FM 100.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि आगाज हो चुका है तो आपको बताएंगे तरीका कार के कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो उसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार को फॉलो करें और आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे स्टेटस हो चुका है अपडेट। तो भाई आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका जिक्र हमने कल किया था कि भाई आज ना हम इस मौजू पर बात करेंगे। तो वो मौजू गुफ्तगू क्या है आप से जानते हैं। तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो कैसे जीने में अब इस चीज की आदत हो गई। जैसे भाई कल जरीन नूर ने कहा था कि अब तो आदत सी है मुझको लाइट के बगैर जीने की, तो अब आपको आदत सी है किस तरह जीने की हमें जरूर बताएं कि क्या ऐसी चीजें जो अब आपको लगता है कि शायद मुश्किल भी है या सही भी है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, लेकिन अच्छी है क्योंकि अब आपको इस तरह जीने की आदत हो गई है। तो ऐसी क्या चीज है जिसके साथ जीने की हो चुकी है आपको मुकम्मल आदत। वैसे आज के टॉपिक का क्रेडिट आपको पता है किसको जाना चाहिए? आज के टॉपिक का क्रेडिट जाना चाहिए आतिफ असलम को, क्योंकि उनके गाने को सुनकर ही हमने चीज को कहा कि चलो जी आज ये टॉपिक हम डिसाइड करते हैं और इसी पर करते हैं बात और लोगों से जानते हैं कि जी अब किस चीज की आपको जो है वो आदत हो चुकी है। तो जल्दी से मैसेज करें और हमें बताएं कि भाई किस चीज की आदत हो चुकी है आप लोगों को, क्योंकि भाई मुख्तलिफ चीजों की आदत है, किसी को बगैर लाइट के रहने की आदत है। मुझे अगर कहा जाए ना तो अब वो जो गैस की एक मुश्किल है ना उसकी आदत हो गई है, क्योंकि कभी गैस है कभी नहीं है, तो एक ये एक थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन आप क्या करें। अब वो कहते हैं ना कि जी आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो आपको भी हो चुकी है किस किस चीज की आदत हमें जरूर बताएं। आप तो जानते हैं कि जी सवाल पूछूं तो मैं सोचने का मौका आपको जरूर देती हूं कि जी आप तसल्ली से सोचें और फिर हमें बताएं। तो नाजिया हसन की खूबसूरत आवाज आपको सुनाते हैं और आपको सोचने का मौका देते हैं, सोचें और फिर हमें बताएं।

Yes, my friends, so today is 13th of October, so happy birthday to you. Agar aaj aap mein se kisi ki salgirah hai, ya aapki kisi relative ki salgirah hai, ya koi bhi jo khas aapki zindagani mein ahmiyat rakhta hai, agar uski salgirah hai, to ji aapko mubarak ho. Aaj jo hai wo, aur kaun kaun se din manaye jaate hain, is par bhi hum aapko batayenge. Aaj jo hai wo English language day manaya jata hai, yani ki English ke language ka aalmi din. Aalmi din to nahi, matlab ek, it's a day, aur English aajkal jo hai wo ek bada important role play kar rahi hai हम सबकी जिंदगानी में, बिकॉज इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है. इट्स वेरी इजी, कोई कोई जबान समझे या ना समझे, लेकिन एक इंग्लिश वो जबान है जो कि सब आसानी समझ जाते हैं. और इंग्लिश अब बड़ी एडवांस भी हो गई है, यानी कि ये भी एक सूरत हाल है. पहले इंग्लिश इज क्वाइट ईजी एंड इंग्लिश इज स्टिल सो ईजी, बट ये है कि अब जो है वो जेन जीज ने जो नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा है उसकी वजह से या दीगर चीजें हैं, तो इंग्लिश काफी एडवांस हो गई है. लेकिन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसी जबान है जो आपको आना बड़ा जरूरी है, ताकि आप जो है वो इजीली सर्वाइव कर सकें बाहर. तो बाहर रहने के लिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ बाहर रहने के लिए नहीं, कि अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए. इंग्लिश आपको वैसे आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के इंग्लिश इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज जो कि अब आजकल सब इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बात करने के लिए. तो भाई इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट रोल है हम सबकी लाइफ में, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए. So yes, these are the fresh updates according to the days. तो ये दिन मनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमने पूछा था कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो कैसे जीने में आप हमें जरूर बताएं. ये हमारा सवाल है आपसे जिसके जवाब को हम शामिल करेंगे. तो जल्दी जल्दी आपने बताना है कि आपको आदत सी है कैसे जीने में, किसी के बगैर जीने में, किसी के साथ जीने में, या नहीं. अच्छा, ये इसी चीज से मैंने एक और चीज भी रियलाइज की कि अब ना हम एक दिन ये सवाल भी आपसे पूछेंगे कि अब तो आपको मुश्किल चीज क्या लगती है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वो क्या चीज होगी, इस पर भी करेंगे बात. तो आपके जवाब को हम कर रहे हैं शामिल, जल्दी जल्दी हमें मैसेज करें. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas ek baar phir se. Aur aap sab sun rahe hain program Lunchtime Special with me. तो जी प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत तो आप जानते ही हैं कि एक अदर ट्रैक किया जाता है आप सभी सुनने वालों के नाम और आज हमारा एक सवाल भी चल रहा है आपसे जिस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है लेकिन मैं कहती हूं कि जी सबसे पहले जो जिम्मेदारी है ना इंसान को वो अदा कर देनी चाहिए यानी कि एक अदर ट्रैक जो हम आपके नाम करते हैं ना सबसे पहले जी उस जिम्मेदारी को करते हैं पूरा और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे तो भाई टेंशन की बात जो है ना वो ये होती है कि जी कौन सा ट्रैक किया जाए आप सबको डेडिकेट जिसे सुनने के बाद आपको आ जाए मजा तो भाई आज ना मेरे पास रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आ रही हैं और ये ट्रैक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी है तो मुझसे कहा गया है कि जी बाजी इसे शामिल कर लें बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है जी मेजोरिटी विंस तो आज हम इसी ट्रैक को करते हैं आप सबको डेडिकेट सो एंजॉय फिर वापस आकर अपने गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे

तो भाई आज तो हमारे प्रोग्राम का एक अदद सवाल चल रहा है कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो कैसे जीने में। लेकिन इसी के साथ साथ ये सवाल तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और वो सवाल होता है कि आपके लंच में क्या है, तो क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, क्या बना रही है, क्या बनाने का इरादा है, या फिर कुछ बाहर से मंगवाने का इरादा है। तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं। कुछ मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, शामिल करेंगे। तो लुकपल कहती है आज लंच में छोले का पुलाव है, ओ माई गॉड दैट इज सो यमी। और कहती है कि प्लीज प्ले रहीम शाह का सॉन्ग, और ये गाना मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। बट यार आज आप कोई और रिक्वेस्ट कर लो, बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड इट। और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा सवाल हमने आपसे पूछा, तो आप जल्दी से इसको जवाब दें, हमें बताएं और आपके लंच में क्या है, क्योंकि लंच जाने बगैर तो प्रोग्राम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जल्दी से हमें मैसेज करें या फिर कमेंट करें और बताएं कि आपके लंच में क्या है। आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद, जब तक सोचें और हमें बताएं या फिर देखकर बताएं कि लंच में क्या है।

यस माय फ्रेंड्स, तो आज हम कोई और टॉपिक को डिस्कस कर ही नहीं रहे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस के अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो कैसे जीने में। साबिर भट्टी कहते हैं कि जी हाउ आर यू, लंच में हम कुछ पका कर देंगे तो खाएंगे तो खा लेंगे, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। ठीक है जी, शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ दरवाज में भी मैसेज करते हैं और कहते हैं अब तो आदत सी है मुझको रोज बाइक पे जाने की। ये बात भी ठीक है भाई, अमूमन तौर पर जो मर्द ज्यादा हैं, लड़के हैं, वो बेचारे जो हैं वो बाइक पर ही जा रहे होते हैं और बाइक पर ही आने जाने की जो है वो सूरत हाल रहती है। तो वाकई में अब वो इतने बेचारे यूज टू हो जाते हैं ना बाइक पे आने जाने के बस मतलब उसके अलावा बेचारों की जो है वो कोई और अदर एक्टिविटी होती नहीं है। तो बाइक इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेन्स लाइफ। बेसिकली मर्दों की जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइक का, क्योंकि बाइक पर ही उनका आना जाना रहता है। तो ये है कि बाइक जो है वो जिंदगानी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन चीज में से एक है। अच्छा जी, तो आज कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं, उसमें है ओन बिजनेस डे भी। ओके, जिनका अपना अपना बिजनेस है आज उनका भी दिन है। इसी के साथ है जो है आज, अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, आज इंटरनेशनल डे ऑफ फेलियर्स भी मनाया जाता है। वाह भाई वाह, कितने सारे दिन मनाए जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगानी में और हमें पता ही नहीं चलता। तो आप ये देखें कि हर जगह हर जाने हर किसी की इम्पोर्टेंट जरूर है, ऐसा नहीं है कि जी इसकी या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो भाई आप हमें जल्दी जल्दी बताएं क्योंकि वक्त ऐसे गुजर रहा है कि अब तो आदत सी आपको कैसे जीने में, तो हमें जल्दी से बताएं। हम आ रहे हैं वापस ट्रैक के साथ।

ओके तो आप लोग सब एंजॉय कर रहे थे बसुड़ी को, और इसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। हमारे पास एक और मैसेज आए हैं, और ये गुमनाम मैसेजेस किसके हैं ये मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि जी आप ही लंच में आज समोसा खा रहे हैं, बड़ा दिल चाह रहा था। हाँ वैसे समोसे का एक्चुअली में ना कभी कभी दिल चाहता है, लेकिन कराची में एकदम से इतनी गर्मी हो गई है ना कि जिसकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको कराची का दर्जा हरारत बता देती हूँ। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस, इट्स 38 इन कराची टुडे। जी हाँ 38 एंड रेन फील्स लाइक इस 40, तो गर्मी तो है। और कल दर्जा हरारत जो है वो महसूस किया जाने वाला 45 तक पहुंच चुका था। तो बेसिकली अक्टूबर इज अक्टूबरिंग, मतलब अक्टूबर का महीना वैसे भी एक ऑब्वियस चीज है कि हमने इतने टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये कभी भी ठंडा महीना तो नहीं रहता, लेकिन गर्मी है और बड़ी गर्मी है। तो अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे और इस मौसम से हम लोग सही से रहें, मतलब इंजॉय करें। खैर जी कहते हैं आप ही, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में कि क्या बताएं आपको, बहुत सारी चीजें हैं चंद तो बताएं भाई, बिल्कुल हमें बताएं वो चंद चीजें। और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। तो आप लोगों से होगी इंशाल्लाह मुलाकात मेरी कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: है तो फायदा है,
1: बेबाक है
0: तो ऐड टू कार्ट है,
1: बेबाक है
0: स्टोर है, ऑनलाइन एनीटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 It's the soundtrack of your life. It's FM 100.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम खान। Across the nation, this is FM 100.

0: पे बैक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: आइडिया, अगर आइडिया ही रह गया तो किस काम का। इंट्रोड्यूसिंग प्राइम मिनिस्टर्स स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। स्पार्क से आइडिया को ट्रांसफॉर्म करो फंक्शनल प्रोटोटाइप में और एलिवेट से फंक्शनल प्रोटोटाइप को मार्केट रेडी सॉल्यूशन में 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग के साथ। अप्लाई एट scgms.ignite.org.ek। लास्ट डेट 26 अक्टूबर। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम।
0: This program is brought to you by Paybuck. आज ही अपने बैंक से बनवाए। And
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपाक है
0: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।

0: commercial break. Break. Break.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL
2: 100 FM.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account.
3: This program is brought to you by
4: Deepak. आज ही अपने बैंक से बनवाएं.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
3: हमने अपना आप उसे तीन बार मौत देखे।
4: टाइम से हूं ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
5: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
2: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
6: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
2: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें। ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदामात जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदामात आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
8: FM 24/7 365 FM 24/7 365.
9: Back to back music on the Hot 100.

0: Debak. आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: अपने टेक्नोलॉजी आइडियाज को दें उड़ान विद प्राइम मिनिस्टर्स पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। बोल्ड आइडियाज को फंक्शनल प्रोटोटाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक, जबकि फंक्शनल प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। आज ही अप्लाई करें एट segms.ignite.org.pk। आखिरी तारीख 26 अक्टूबर। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट।
3: अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम।
0: This program is brought to you by Debak. आज ही अपने बैंक से बनवाएं।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to jo hai
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: पेपा कार्ड है
3: तो फायदा है।

0: PM. The sound check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Paybuck. Aaj hi apne bank se banwaye. And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
2: पेपा कार्ड है?
3: है तो फायदा है.

0: आजिए अपने बैंक से बनवाएं।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। दिस प्रोग्राम इज

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादे आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: इत्तबार, नो पानी, नो परेशानी।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।

0: मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार, मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365. It's not just

Two mic check 1 2 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब. क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे. सुन रहे FM 100 और जनाब साथ साथ मैसेजेस भी आप लोग करते हैं के एच आर स्पेस टेक्स करते हैं और सेंड कर देते हैं 3635. ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ, ड्राइव करें, घर में बैठे हैं तो भाई एंजॉय करें. अच्छा, अक्सर लोग बोरियत तार लेते भाई आज बोर हो रहा हूं, तो ये आपके अपने ऊपर है. बिल्कुल बोर नहीं होना, बस एफएम 100 लगा लें आप सुकून के साथ. अच्छा जनाब, जो आ रहे हैं उनको वेलकम, जो जा रहे हैं खैरियत से जाएं, खैरियत से आएं. और जिन जिन लोगों की आज बर्थडे उन्हें कहेंगे हैप्पी बर्थडे. नदीम अंसारी हमारे साथ, हमारी छोटी सी टीम उस्मान दी ग्रेट, और इसके अलावा जॉनसन बहुत दिनों के बाद मुझे आज नजर आ रहे हैं, हमारे बहुत प्यारे से इंजीनियर जॉनसन भी थे और उन्होंने दोबारा रीज्वाइन किया, तो जॉनसन को वेलकम कहेंगे. क्या कहने जनाब, पुराने पुराने लोग जब आते हैं तो खुशी हो रही होती. अच्छा जनाब, आगाज करेंगे इस खूबसूरत ट्रैक से, और आज है क्या ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन जो है जरा मिक्स गाने होते हैं, नए पुराने रीमिक्सेस, इंग्लिश उर्दू अरबिक पश्तो सब चीजें होती फुल टाइम. लेकिन आगाज करेंगे इस खूबसूरत ट्रैक से.

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
6: Active. Yummy. Durable.

हाय जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ जनाब मैसेजेस कर रहे हैं KHR स्पेस, टेक्स्ट करते हैं, संख्या देते हैं 3636 पर। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप लोग मैसेज करते हैं, मैसेंजर पर भी मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा जनाब, बिलावल सबसे पहले 3636 पर मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं बिलावल गिजरी से, अयाज भाई आपको, सुंबल जी को, कादिर भाई को और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज है? बस मिजाज अभी मैं आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ और आप लोगों के मैसेजेस जब पढ़ूंगा तो मिजाजों का फिर जो है ना आपको पता चल जाएगा फौरन। पीर एमिलियास आ गए, पीर साहब कितने हो भाई जान, वेलकम कराची हीरो अयाज भाई, आई होप यू आर गुड एंड ऑल्सो आई श्योर यू आर गुड और बैकग्राउंड म्यूजिक वेरी ब्यूटिफुल। प्लीज आज मुन्नी बेगम को, कल भी हमने प्ले किया था मुन्नी बेगम के गाने, एक बार मुस्कुराते, बार बार मुन्नी बेगम, मुन्नी बेगम है, बड़ी हो जाएंगी, इतनी दफा कर प्ले किया। जरी नूर कह रही है सलाम, कैसे हो? सबको सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम, जल्दी जल्दी हाजिर होगी। अच्छा जी, जानिया फिर हाँ हंसी है, जानी जाने, अरे इतने जाने लगा दी तुमने, मत करो क्यूट डोला, एहतराम से आपके लिए नाम। ये भाई आपको भी समझ आया तो मुझे बताना, मुझे नहीं आया समझ क्या कहना, इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है। अच्छा जनाब, गयासुद्दीन बलबन जो है वो मुल्तान से हमें देख रहे हैं, सलाम अलैकुम, पूरी टीम को सलाम, सब सुनने वालों को भी सलाम, वालेकुम सलाम गयास, क्या हाल है भाई। और इसके अलावा मिस्टर फारूक आ गई हैं, नसरीन पटेल क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से? यार नसरीन पटेल अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा तो दिल चाह रहा है यही कहूं मैं, नसरीन पटेल ठीक है। कहनी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, लॉट्स ऑफ लव एंड दुआ, थैंक यू वेरी मच नसरीन जी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारी प्यारी सी नादिया मलिक जो है ना, यार नादिया इतना जबरदस्त साउंड आ रहा है, उन्होंने क्लिप बना के मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे कि ये देखो यूके में ये कराची से ज्यादा साफ सुथरी आवाज जा रही है भाई, इतना जबरदस्त साउंड, सांसों की माला, सांसें उसमें से सुनाई दे रही है, सांसों की माला से, वाह वाह वाह वाह नादिया, चाहिए सिस्टम अच्छा है तुम्हारा, तारीफ कर दी मैंने। अच्छा जनाब, सबको सलाम दुआ भी कह दी इन्होंने, कामों में बहुत बिजी, क्या चीज, क्या बना रही, बम बना रही हो क्या है, इतने मसरूफ चल रही है, नींद पूरी नहीं हो रही, वो एग्जीबिशन हो रही शायद उसके चक्करों में बहुत बिजी है नादिया जी। चलो जनाब जो भी करनी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी संजू आ गई है, अस्सलाम वालेकुम, और बड़े भरपूर तरीके से वेलकम करती है, तबीयत अच्छी होगी अल्लाह का शुक्र, अभी तक बेहतरीन। और इसके अलावा पहला ट्रैक इनको पसंद आ गया। अच्छा जी शहजादे, आपके आने वक्त और भी अच्छा, अच्छा आपके आने से वक्त और भी अच्छा गुजर जाता है, दिल से दुआ देती हूँ, हमेशा शाद बात रहे, आमीन। अरे क्या बात, क्या बात है, इतनी खूबसूरत और प्यारी दुआ देने पर बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई अब जरा नेक्स्ट ट्रैक, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी क्यू शीट पे जरा खास नजर होती है और कोशिश करते हैं कि क्यू शीट जरा डिफरेंट हो, पता नहीं है आप लोगों को लगती है, वैसे बहुत से लोग जो है पसंद भी कर रहे होते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया, और इसीलिए फिर हिम्मत होती है। हाय हाय, चेक करें जरा इस सॉन्ग को,

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और कयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं आपका वक्त तो हमारे लिए कीमती सरमाया आपके साथ चाय पी लेंगे तो सरमाया ही सरमाया अलिफ नून याद आ गया क्या डायलॉग थे यार जबरदस्त वैसे वाकई यार यहां आता हूं तो मुझे भी ना बहुत मजा आता सीरियसली टाइम का पता ही नहीं चलता अच्छा जी मिस्टर फारूक कह रही है कि जो दिल करे आप कह लें नसरीन पटेल भी अच्छा है ओरिजिनल नाम जो है ना उसकी फिर अपनी बात है लेकिन लोग ज्यादातर मिस्टर फारूक के नाम से जान रहे होते हैं लेकिन नसरीन सही है एंजेलिना कह रही है भाई किंग आपको सलाम बिलावल नौरीन जनी और सारे निशंस को सलाम आरिफ लोहार की आवाज में कोई सॉन्ग प्ले करना अरे आरिफ लोहार की आवाज में तो नहीं है लेकिन आरिफ लोहार का एक गाना जो है ना वो अंग्रेज मैम ने गा लिया वो थोड़ी सी देर में मैं आपको सुनाता हूँ अभी नहीं थोड़ी सी देर में और मुनीर खान क्या लिखा है अच्छा जी अरबिक सॉन्ग अगर हो जाए तो अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं चले कोशिश करते हैं मिल जाएगा कहीं ना कहीं से जरूर और जनाब नादिया मलिक क्या कह रही है मिस्टर फारूक रुबाब संजीदा चाची सबको सलाम केम चो भी वाह केम चो डिकरा अच्छा जी संजू क्या कह रही है संजू कह रही है क्यू शीट पर ही नजर रखते हैं है तुम्हारी तो क्या संजू हर जगह नजर है हर जगह कोई तुम्हारी नजर से बच के नहीं जा रहा अरे वाह गाना पसंद आ गया मैं इनको चले जी बहुत शुक्रिया संजू जी बहुत शुक्रिया आपका अच्छा जनाब तो यूके में नादिया मलिक सुन रही है और जब इतनी दूर से कोई सुने और मैसेज भी करे अच्छा लगता है अच्छा तो लगता है भैया भाई हमारी क्लास में ना इसलिए जरा सा इनका ख्याल हम रख रहे होते हैं और स्पेशली ये ट्रैक जो है वो इन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं और वो है कैसे

0: बजर आप सुन रहे हैं 100 अयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। और जनाब नादिया मलिक कह रही है कुछ भी हो रही है कह रही याद रखा बिल्कुल इन्होंने एक दफा मुझे कहा था शहरी शहरी लेडी और वो जरा से नए स्टाइल से मैंने आज इनको डेडिकेट किया और पसंद आ गया सबसे अच्छी बात ये नादिया देखो सब बातों का ख्याल रखता हूँ मैं और एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी शेयर की कह रही है सुना है कि सबर का फल सबको मिलता है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला शायद मेरे लिए जूस बन रहा है बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा है इसमें भी सबर नहीं हो रहा बताइए तरह मिस्टर फारूक क्या कहने आपके गाने इतने पसंद आ गए हैं और कह रही है ऑल सॉन्ग्स ऑसम थैंक यू वेरी मच जनाब बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया अच्छा जी अब छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद और वो है कैसे
1: लाइक अस ऑन
2: Active, yummy, adorable,
3: zabardast.
2: Ye pyaar to suno yaar.

हाँ जना, वेलकम बैक और सुन रहे हैं FM 100। अच्छा जी, और भी गाने हैं लेकिन आज एक स्पेशल गाना भी है और वो है हुमा ख्वाजा, हमारी बहुत ही फेवरेट सिंगर और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने गाने जो है वो बनाए हैं। तो आज मैं कोशिश करता हूँ उनको भी जरा, पहली दफा उनका ये गाना हम ऑन एयर करेंगे थोड़ी सी देर में। और इसके अलावा सलीम भाई, सलीम जावेद, क्या कहने इनके, इनका भी गाना आ गया है, क्या जबरदस्त वीडियो, क्या खूबसूरत ट्रैक। तो ये दो नए गाने, खूबसूरत आर्टिस्ट, दोनों के गाने भी थोड़ी देर में मैं प्ले करता हूँ। अच्छा जी, उससे पहले नादिया जी कहनी थी कि ये बात याद रखी हुई थी, तो मैं आपको बताऊं नादिया जी, आरजी वही है जो बातों को याद रखे, लोगों की रिक्वेस्ट जो है उसको याद रखे। फौरन मैं अपनी तारीफ करूं, फौरन टाइम जाया किए बगैर। और गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं शहरी शहरी वाह वाह, शहरी तो फिर वाह वाह है। अच्छा भी अभी किसी ने रिक्वेस्ट की, किसने, कि भाई आरिफ लोहार का जो है वो एंजेलिना ने कि वो प्ले कर दें। तो आरिफ लोहार तो नहीं, लेकिन एक ये इंग्लिश मैम ने गाया है और वो भी जुगनी, और जरा अपने स्टाइल में गाया, मुझे बहुत क्यूट लगा। तो आज मैंने क्यू शीट में खास तौर पे इसको रखा है, तो जरा चेक करें आप ये कैसे है।

भाई जनाब क्या बात है जनाब, इस गाने को कट करने को दिल ही नहीं किया। मैंने कहा तो बस प्ले होता रहे, थोड़ा सा और बैकग्राउंड में रख लेते हैं। इनको सॉन्ग भी सुना दो प्लीज, मुनीर खान मानसेरा पाजी। मैं इनको मुझे बताओ अच्छा कौन से फेमस गाने मुझे लिख के बताओ कौन से, नेक्स्ट किसी शो में जरूर प्ले कर देंगे हम। अच्छा जनाब एंजेलिना कह रही है थैंक्स एंजेलिना, मोस्ट वेलकम।

भाई चिट चैट वाकई बहुत अच्छी है, आपकी बातों से कुछ देर के लिए टेंशन दूर हो जाती। किस बात की टेंशन रखी भी नौरीन, खुश रहा करो, बाजू का तुम छोटी छोटी बातों क्यों ना टेंशन ले लेते हैं, बिल्कुल टेंशन ना ले आप। और कहने के दिल से तारीफ करती हूँ, बात समझने और जवाब देने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, ऐसी सहूलत फराहम करने पर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक, सदा सलामत रहे। इतनी दुआएं, आंखों में आंसू आ गए मेरे, कह रही है जबरदस्त जुगनी, यही तो मैं कह रहा हूं, कमाल जुगनी गा गई। वैसे क्यू शीट में अब रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और एक और बहुत खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द

है जनाब, वेलकम बैक. सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं. और अब जो मैं ट्रैक प्ले करने वाला हूँ, हमारी बहुत ही स्वीट सी हुमा ख्वाजा, इनका ये ट्रैक बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से इन्होंने बनाया है. पहली दफा मैं अपने शो में ऑन एयर करने जा रहा हूँ, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हुमा ख्वाजा आपको. और मैंने तो सुना, मुझे बहुत पसंद आया, तो आप लोग भी सुने और मुझे बताएं कि आपको ये ट्रैक कैसा लग रहा है. और डेडिकेट करेंगे हुमा ख्वाजा आप ही को.

हैं जनाब, वेलकम बैक। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम ख्वाजा आपको। अच्छा जी, बिलावल कह रहे हैं सर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। अब जो नेक्स्ट गाना ना वो मैं आप ही को डेडिकेट करने वाला हूँ। पीर एम इलियास के मैसेज आ गया, एयाज भाई वेरी ब्यूटीफुल शो, आई लाइक इट एंड ऑल्सो इंग्लिश जुगनी, माई बेस्ट विशेज विद यू एयाज भाई। यार मोस्ट वेलकम जनाब। हाँ यार, ये इंग्लिश जुगनी थी, बर्गर जुगनी कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी, मुझे बड़ी क्यूट लगी है, तो हम रखेंगे शोज में इसको। अच्छा जी, इसके अलावा शेख इमरान कह रहे हैं एयाज भाई खैरियत से हैं, कुछ रोमांटिक रहे सॉन्ग डेडिकेट माय लवली डॉटर सुहाना इमरान फबीहा इमरान। आगे क्या झूला भाई इमरान, अच्छा झूला भाई जान क्यूशीट बनी होती ना झूले, बाद में हम झूले लाल, आज झूले वाला गाना नहीं है। अच्छा जनाब, इसके अलावा नौरीन तौसीफ जो है ना, कुछ सलाम भेज रही है संजू को और संजू बहना को, एंजेलिना को, नसरीन को, जरीन को सलाम, वालेकुम सलाम उनकी जानिब से। अच्छा जी, और इसके अलावा डिनर से फारिग होकर शो सब फैमिली सुन रही थे, अब मैं रूम में आ गया। अच्छा, पूरा उन्होंने बताया, डिनर विनर कर लिया भाई संजू ने। और यूके से नादिया कहनी साहिर लोदी इन लंदन, लंदन में सब पहुंच गए सिवाय मेरे और हमारे लिसनर यहां बैठे हुए, और यूके में बस नादिया मलिक जो है वो मैं सुन रही हूं, बाकी सारे पहुंचे हैं। चले जनाब नेक्स्ट ट्रैक, और वो है कैसे

0: रशीद भाई आगे हैं। रशीद भाई क्या हाल है? बिलावल कह रहे हैं गुड लक हुमा ख्वाजा, गुड लक जनाब, गुड लक। और संजू क्या कह रही है? जुगनी और हुमा ख्वाजा का सॉन्ग बेहतरीन था भाई, वाह वाह वाह। अभी तो सलीम जावेद का भी गाना है, पुराना गाना था बहुत, उसको जरा नए स्टाइल से बनाया, तो थोड़ी सी देर में मैं सुनाता हूँ। अच्छा जनाब यूके में कह रही, चलो चलो कोई बात नहीं, ब्रेक टाइम हुआ है थोड़ा सा, हमारा भी वैसे थोड़ी देर में ब्रेक टाइम होने वाला है, 10 बजते हैं तो जरा टाइम चेक और कुछ सेकंड की ब्रेक है आज। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: इट्स 10 PM, द साउंड चेक इज ब्रॉट टू यू बाय पेपक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।

0: 265. FM 247. 365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
2: Active. Yummy. Jorgen.
3: Zabardast.
2: ये प्यार तो सुनो यार.

अच्छा बड़ी देर से हिंको से भी वो कह रहे हैं गाने जो है वो प्ले करें, तो हिंको के गाने भी उन्होंने लिखे हैं कि यासिर कश्मीरी हिंको सॉन्ग मुनीर खान मानसेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा यार अगर कोई आपको इतनी इज्जत दे रहा है प्यार से नाम देकर तो इसे कबूल नहीं, इस काबिल नहीं जो मेरे नसीब में नहीं है, मैं बाद नसीब हूँ अफजल खान पाका। सरकार आपने क्या लिखा है, क्या लिखने की कोशिश की अफजल भाई, कक समझ नहीं आई हमारे दिमाग में, क्या लिखा है आपने और किसके बारे में लिखा है, ये भी जरा रोशनी डालें इस पे कि क्या कहना चाह रहे हो आप। अच्छा जी ब्यूटीफुल सॉन्ग कमाल कर दिया है दूसरी थे और मस्ती बर्दाश्त करो ना। हाँ अच्छा जी मैं तो करता रहता हूँ जनाब, मेरा तो काम ही मस्तियों को ना बर्दाश्त, कहीं इधर लेफ्ट कभी उधर लेफ्ट, ये मेरे काम है। अच्छा हिंको वाले जो भाई मुझे भेज रहे हैं यार जी, एक पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का गाना मुझे समझ में आया लेकिन यार क्यों ना चाहिए, थोड़ा सा सुनाता हूँ हिंको वाले भाई, इसको इनको समझ के सुन लो।

यहाँ कहने। अच्छा समझ नहीं आ रहा लेकिन मजा दे रहा है। अच्छा इनको तो मेरा ख्याल से नहीं है, कोई और ही जबान है। किसी को अगर पता चल रही तो मुझे मैसेज करेंगे कि चाहे स्पेस टेक्स करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर, पता तो चले जबान है कौन सी। अच्छा जी और संजीदा जी भी यही कह रही है समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं तुमने समझ के करना क्या है, क्या करना समझ के, तुम बहुत समझदार हो गई हो। वह जनाब समझने की बात है तो फिर लीजिए जी, आप ही को डेडिकेट करता हूँ। और इस गाने की पता नहीं क्यों बहुत रिक्वेस्ट आने लग गई है।

हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त ट्रैक, क्या जबरदस्त शायरी। बहुत शुक्रिया संजू जी, आपको ये ट्रैक पसंद आ रहा है। और कह रही है कि भाई ये भी आपके शो में सुना पहली बार, बहुत ही दिल छूने वाला सॉन्ग है। अच्छा जी, और यही बात जरीनूर ने भी कर दी, बड़ी मेहरबानी आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। गाने तो वाकई दिल छूने वाले बनाए हैं, और ये अच्छी बात है कि कुछ हमारे शो के भी स्पेशल गाने बन गए, ये अच्छा हो गया। आए नसरीन पटेल आ गई है, कहनी कि बिजी हो गई थी, जबरदस्त सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग है चलेंगे ना, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, गाने पसंद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ये एक और जरा ट्रैक सुने आप, ये भी जरा, ये भी पहली दफा ऑन एयर कर रहे हैं।

भाई जान ये इनको सॉन्ग नहीं था, अताउल्ला का कोई सॉन्ग लगा दे सर, मैं कोई पंजाबी गाना आपको डेडिकेट कर दूंगा। ठीक हो गया मुनीर खान। और इसके अलावा नसरीन पटेल कह दिए कि क्यूट सॉन्ग, थैंक यू वेरी, बाकी क्यूट सॉन्ग है। हाय हाय इकट्ठे हो जाएगा भाई, इकट्ठे हो जाएगा। अच्छा जी संजू क्या कह रही है, आज नहीं तो कल प्यार हो जाएगा। हाँ जी ये गाना इसी तरह का है, ये आसान पंजाबी समझ आ रही है जाने जाना। वैसे पंजाबी बहुत ही आसान है, इतनी मुश्किल तो है नहीं। हाँ लेकिन कुछ होती है बहुत, लेकिन आजकल जो गाने बन रहे हैं इजी पंजाबी में बन रहे हैं, समझ आता था। अच्छा जी एक दफा आपने इंग्लिश क्लासिक सॉन्ग प्ले किया था, पॉसिबल हो तो प्ले। ये मुझे कैसे पता चलेगा नसरीन पटेल जी, क्या इसमें मुझे बताएं मैं कैसे गाना ढूंढूं इसमें से। क्लासिक गाने तो इतने सारे मैं प्ले करता रहता हूं। क्लासिक गाने की बात कर दी है तो अब बात करेंगे हम सलीम भाई की, यानी सलीम जावेद की। क्लासिक गाने को उन्होंने नए सिरे से तड़का वड़का लगा के जरा नए स्टाइल से वीडियो भी बनाई है और ट्रैक भी बनाया है, तो सलीम भाई के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये गाना नो डाउट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, चेक करें आप जरा।

में जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और मदिया जी बहुत शुक्रिया कह रहे हैं कि कमाल की उशीट मनाई हुई है हमेशा की तरह लाजवाब शो। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी मदिया जी बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम अयाज भाई, आशिक कभी माशूक को रुस्वा नहीं करते, गुड सॉन्ग, आपके सारे गुनाह माफ हो गए। नदीम मंगेश, नदीम भाई क्या हो गया, इतना पसंद आ गया क्या? नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब और नसरीन पटेल क्या कह रही है कि नाम नहीं पता बट बहुत प्यारा सॉन्ग था इंग्लिश क्लासिक, नहीं मैं कभी प्ले करूं तो आपने यूथ में वो याद करना है और मुझे मैसेज कर देना उसी वक्त कि भाई ये था वो सॉन्ग। अच्छा जी और संजू क्या कह रही है, दिल के सादे कागज पर कह रही वाह वाह आज तो बेहतरीन और पहली बार सॉन्ग सुन रही हूँ, शानदार सलीम जावेद का सॉन्ग जबरदस्त, बहुत पुराना ये 1980s में, भाई सलीम भाई को पता चल जाए मैं उनकी उम्र बता रहा हूँ, काफी पुराना 80s में एक एल्बम आई थी उसमें ये सॉन्ग था। कभी मैं उसको देखता हूँ तो या सुनता हूँ तो उसकी वो रिकॉर्डिंग नहीं है तो इन्होंने दोबारा से इसको बनाया और बहुत ही कमाल बहुत ही आला। बुलाएंगे किसी दिन शो में बुलाएंगे और इस गाने के बारे में पूछेंगे। अच्छा भाई अब जरा नेक्स्ट ट्रैक के जाने, भाई नौरीन तौसीफ भी मैसेज करने जा रही हैं, बेहतरीन कलेक्शन सलीम जावेद की आवाज भी और सॉन्ग किसी जमाने में टॉप पर था, बिल्कुल सही पहचाना भाई नौरीन, आप गाने सुनने वाली लग रही, सारे गाने याद हैं। चले जनाब नेक्स्ट ट्रैक के जाने पर, ये भी वैसे कमाल गाना है।

हाँ हाँ। अच्छा ये गाना सुन के ना पता नहीं क्यों मुझे ये वाला गाना भी याद आ रहा है, जरा चेक करें आप काम डाउन। और इस गाने को थोड़ा सा हो सकता है मुझे लग रहा हो जी, सुन रहे हैं FM 100। और इसके अलावा बिलावल कह रहे हैं सर जबरदस्त शो, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। पाजी सॉन्ग तो सुना दे प्लीज भाईजान, मुनीर खान, मुनीर खान में सुनाना सॉन्ग, पंजाबी गाना भाई इनको, ये तो मैंने सुना चुका हूँ लेकिन ये मुनीर भाई के लिए जरा पंजाबी गाना, सब साइड पे हो जाए, सिर्फ आपको मैं डेडिकेट करता हूँ।

जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, कह भाई ये पंजाबी सॉन्ग नौरीन जी के नाम कर दे, नौरीन के नाम कर दिया हमने, पूरा शो जो है वो नौरीन के नाम है, तसल्ली रखें आप। अच्छा जी, और इसके अलावा संजू क्या कह रही है, संजू ने जो कह दिया नसरीन पटेल कह रहे लवली सॉन्ग। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड भाई जान। मुनीर खान, बहुत शुक्रिया, पसंद आया आपको, चलो मुनीर भाई जो है ना खुश हुए यार, ये एक अच्छी बात होगी। अच्छा जी, साबिर भट्टी भाई आए हैं और कह रहे हैं याद भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, और वेरी गुड प्लीज सॉन्ग तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। यार ये वैसे भाई जब भी आता है इस गाने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों शूट जब बनी हुई है ना, चलिए मैं वादा नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ कोई मिलता है गाना तो मैं जरूर प्ले करता हूँ, ये बात ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जनाब, और इसके अलावा नौरीन तौसीफ भी आ गई, हाय हाय नौरीन जी, गुड सॉन्ग, बहुत शुक्रिया, चले जनाब शुक्रिया की क्या बात है भाई, ये आप लोगों का शो है और मैं कोशिश करता हूँ कि गाने जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आए। अच्छा छोटी सी ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद।

0: नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन।

जनाब इतना मेलोडियस गाना मैंने आपको सुनाया है, तो दिल चाह रहा है जरा यही मेलोडी माहौल जो है ना वो जरा कायम और दायम रहे। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का, मेरे गानों के साथ आपकी बातें, आपके बोलने का अंदाज बेहद पसंद। अच्छा बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, आप लोग की मोहब्बत है प्यार है वरना खाक सर कहां इस काबिल। जनाब गाने में एंजॉय कर रहा हूं सुनने में, यकीनन आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। तो एक दो जरा सराय की गाना जरा चेक करें, जरा सराय की गानों की भी रिक्वेस्ट आती है

क्या बात है, वो कहते हैं ना मीठी जबान है सराकी, और कितना सुरीला और मीठा ट्रैक संजू जी को भी समझ में आ गई। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है जनाब। अच्छा जनाब, जब इसी तरह का माहौल है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत का अपने वक्त का हिट गाना जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ। अंजलिना कहनी है मजेदार प्लेलिस्ट है, थैंक यू अंजलिना, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये वाला ट्रैक जरा आप सुने और मुझे बताएं कि कुछ याद आया।

ट्रैक था यार ये, आज भी सुने वैसे ही अच्छा लग रहा है। ओए ओए बहुत तारीफें आ गई भाई इस गाने की, बहुत तारीफें आ गई। हमारा जी बहुत शुक्रिया, मदिया बहुत शुक्रिया आपका। और संजू जी तो कह रही है वाह वाह वाह वाह, और पूरे शायरी भी लिख दी भाई आपने तो अच्छा। और इसके अलावा क्या कहते हैं नसरीन पटेल जो है ये भी कह रही है थैंक यू एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सर जी क्या बात है, कोशिश कर रहा हूँ हर गाना एक से बढ़कर एक हो, आपको पसंद आए, कहीं और इधर उधर दूसरे स्टेशन पे जाने की जरूरत ही ना हो।

जनाब इसला बोनिका, मैडोना को कैसे भूल सकते भाई। अच्छा भाई, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, वो भी बड़े दिनों बाद आज मुझे सुन रहे हैं, इमरान साजन। इमरान कैसे हो मेरे भाई, बहुत अच्छे म्यूजिशियन, करोड़ों ड्रामों में उन्होंने म्यूजिक दे डाला। पहले जो एक दौर था सिर्फ इमरान साजन का ही नाम था, जो ड्रामा देखे उसमें इमरान साजन छाए हुए होते थे और इनके जो म्यूजिक है वो आपको ड्रामों में सुनाई देता था। माशाल्लाह अभी भी मसरूफ, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इमरान, बस इतनी तारीफ काफी है ना। पूरी तारीफ करके ऐसी सारी तारीफ जाया कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा जनाब, दो मिनट की ब्रेक नजर आ रही है दोस्तों, और उसके बाद इमरान साजन के लिए अच्छा सा ट्रैक थोड़ी सी देर में मैं उनको डेडिकेट करता हूँ।

0: अशिया को न कहीं जिंदगी को हाथे। आइए इस खतरे के खिलाफ नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मारिया की पाकिस्तान एएमएफ का साथ देने मुस्तकबिल बचाएं काम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 24/7 365
3: ये प्यास तो सुनो यार।

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और बहुत शुक्रिया इतने सारे मैसेज और इतनी तारीफें क्यू शीट की और बातों की भी, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। और साजन भाई का मैसेज मैं अभी सुन रहा था, पूरी दुनिया घूम गया इमरान साजन, पूरी दुनिया घूम के आ गए हो, हमें मनोड़ा तक नहीं लेके गए तुम। ये दोस्त है, ऐसे दोस्त है, खुद पूरी दुनिया घूम रहा है, स्पेन, तुर्की, पता नहीं कौन कौन से मुल्क बता दिए इसने, इथियोपिया नहीं गया, बाकी पूरी दुनिया में चक्कर लगा लिया भाई, जबरदस्त भाई जबरदस्त। और दो प्यारे से शहजादे भी सुन रहे हैं, इनके साहबजादे अरमान और अफनान, अफनान है ना, नाम में गलती हो रही है तो मुझे माफ कर देना। दोनों के लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक जो मैंने प्ले करना है, लेकिन उससे पहले बैक टू बैक आला म्यूजिक, थैंक यू वेरी मच नसरीन पटेल जी, बहुत शुक्रिया आपका। और संजू जी क्या कहनी है, आज का शो भी बेहतरीन मुनफरिद क्यू शीट की वजह से, मेरी वजह से नहीं, दिल तोड़ दिया तुमने भाई। आपको एसगुल और सब सुनने वालों को चाहत और

उम्मीद की जानिब से सलाम जी। चाहत और उम्मीद क्या है? मिठाई की कोई दुकान है क्या? चाहत और उम्मीद। अच्छा जी, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत शो एंड जबरदस्त। बड़ी मेहरबानी एस गुल भाई, बहुत शुक्रिया। मैं बीच में अहमी चावल मार देता हूँ थोड़ी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया अरमान और अरफान दोनों साइड पे आ जाओ, दोनों गाना, ये जो एक गाना ना, दोनों बंदों के लिए। और वो है कैसे,

दस ट्रैक है, इसको भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। कह रहे ये भी कमाल सॉन्ग है, शायद आपको हमारे मैसेज दुखी लग रहा है, कोई दुखी आत्मा लग रही है, ऐसे में हमारे अच्छे नहीं लगते, बट मिस यू, सलामत रहें। मुझे आप सबके मैसेज बहुत अच्छे लगते हैं, बस ये कि नाम लिखा करेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, पता तो लगे कौन है। हाय हाय।

जबरदस्त ये ट्रैक और बिलावल कह रहे हैं शानदार शो, गुड शो, बहुत शुक्रिया यार। जाते जाते मेरा दिल कर रहा है कि उसको दोबारा प्ले कर दे, वो जो जुगनी मैंने सुनाई थी आपको बर्गर स्टाइल वाली, क्या बोलते हो जल्दी से बताओ। देखो यहाँ वाली टीम तो सारी कह रही है दोबारा लगाए भाई, यार इतना पसंद आ गया आप। संजू भी कह रही है डन दोबारा लगाए भाई, वाह वाह अच्छा मैं लगाता हूँ यार। और यहाँ के वोट भी आ गए कि भाई आप ये जाते जाते लगा दो दोबारा। भाई जनाब इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा हिफाज़त।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM 247 365

तुम्हें हमारी, सूरत तुम्हें हमारी दिखाएगा आईना। जब भी नजर के सामने आएगा आईना। अब ये अलग बात है कि वो मैं जब आईने आईना देखो, हमारी सूरत देखना ना चाहो तो अलग बात है, मगर आएगी तो सही। ये तो शायर ने पक्का कहा है, तो फिर पक्की बात है। वो कहते हैं दो दिल एक दूजे को न दूर हो गए, दूर होके वो के भी वो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया के हाथों मजबूर होके, वो दुनिया के हाथों मजबूर होते वैसे दूर नहीं होते। खैर बहरहाल जी, और आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहूंगा एफएम नेट पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर प्रोग्राम ख्वाब दरीचे। आप यकीनन इस वक्त मेरे साथ सुन भी रहे हैं और मौजूद हैं। इस वक्त आप हमारे यूट्यूब पर चैनल पर भी, क्योंकि ऑडियो के साथ वीडियो भी आप देखना चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर, और मैक्स MAKS मैक्स IGTV आप लिखेंगे तो सर्च हो आ जाएगा, करेंगे आ जाएगा। और अगर फेसबुक पर मौजूद है, इसका लिंक मौजूद है मेरी प्रोफाइल पर, मेरे पेज पर जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। सईद अहमद भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और सईद भाई हमारे बड़े पुराने दरीना दोस्तों में से, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत गाते हैं वो। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, क्या हाल है जी? अल्लाह की शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सईद भाई आप कैसे ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच सईद भाई, कल आपने हमारा साथ दिया हमारी खूबसूरत सी महफिल में, खादिम अली खान साहब के साथ खूबसूरत सी महफिल दी जिसमें आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ साथ रहे आप एंड तक, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मगर बड़े अरसे बाद आपने मैं ज्वाइन किया, ये शिकवा है कि बड़े अरसे बाद आपने ज्वाइन किया, हालांकि दरमियान में आप पहले बहुत रेगुलर हमारे साथ होते थे, मगर अब बड़े अरसे बाद। चला खैर कोई बात नहीं, कहते ना देरे आयद दुरुस्त आयद, कि आए तो सही कम अज कम। समरीन बलोच भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी साहब। वालेकुम सलाम समरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और प्रोग्राम ख्वाब दरीचे में आपको और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, वालेकुम सलाम, और आपका सलाम सब तक पहुँचा दिया हमने। खुश रहें, सलामत रहें, और गजलें अच्छी आप प्ले कर रहे हैं और शायरी भी अच्छी आपने पढ़ी है। चले भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और अब हम आते हैं एक और खूबसूरत से कलाम की जानिब, और ये कलाम है इंडिया की शायरा हैं डॉक्टर जूही बेगम शामा। छोटी बहर में बड़ा खूबसूरत सा कलाम है इनका, गौर कीजिएगा लफ्जों पर, आपको यकीन अच्छा लगेगा। क्या कहती हैं कि दिली शिकस्ता में तेरा मुकाम बाकी है, दिली शिकस्ता में तेरा मुकाम बाकी है, रिवायतों का अभी एहतराम बाकी है, रिवायतों का अभी एहतराम बाकी है, सफरी शर्त जो ठहरा है जिंदगी के लिए, सफरी शर्त जो ठहरा है जिंदगी के लिए, कि शाम हो गई लेकिन खराम बाकी है, कि शाम हो गई लेकिन हराम बाकी है, जमाना बीत गया है मगर लबों पे मेरे, जमाना बीत गया है मगर लबों पे मेरे, वही वजीफा तेरा सुबह शाम बाकी है, वही वजीफा तेरा सुबह शाम बाकी है, वफाएं यूं ही रहेंगी असीर रंज मोहन, वफाएं यूं ही रहेंगी असीर रंज मोहन, जफा और जोर का जब तक निजाम बाकी है, जफा और जोर का जब तक निजाम बाकी है, अभी तो वक्त ने बस आईना दिखाया है, अभी तो वक्त ने बस आईना दिखाया है, अभी तो वक्त ने बस आईना दिखाया है, अभी अना का तेरी इन्हदाम बाकी है, अभी अना का तेरी इन्हदाम बाकी है। इन्हदाम का मतलब के गिरना, डूबना, खत्म होना। जमाने भर की है तोहमत से जिंदगी बोझल, जमाने भर की है तोहमत से जिंदगी बोझल, हमारे कत्ल का बस एहतमाम बाकी है, हमारे कत्ल का बस एहतमाम बाकी है, है बेनवाई का गम तुझको किस लिए शामा, है बेनवाई का गम तुझको किस लिए शामा, खामोशियों का तेरे इंतकाम बाकी है, खामोशियों का तेरे इंतकाम बाकी है, जमाना बीत गया मगर लबों पे मेरे, जमाना बीत गया मगर लबों पे मेरे, वही वजीफा तेरा सुबह शाम बाकी है, जमाना बीत गया मगर लबों पे मेरे,
وہی وظیفہ تیرا صبح و شام باقی ہے، وفائیں یوں ہی رہیں گی اسیر رنج موہن، جفا و جور کا جب تک نظام باقی ہے، ابھی تو وقت نے بس آئینہ دکھایا ہے، ابھی تو وقت نے بس آئینہ دکھایا ہے، ابھی انا کا تیری انہدام باقی ہے، زمانے بھر کی یہ تومت سے زندگی بوجھل، ہمارے قتل کا بس اہتمام باقی ہے، ہے بے نوائی کا غم تجھ کو کس لیے شامہ، ہے بے نوائی کا غم تجھ کو کس لیے شامہ، خاموشیوں کا خاموشیوں کا تیرے انتقام باقی ہے، خاموشیوں کا تیرے انتقام باقی ہے۔

जुल्मी एक बार तो मुस्कुरा दो, एक बार तो मुस्कुरा दो कम से कम। उन तमाम दोस्तों के लिए कि जो मुंह फुलाए बैठे हैं, मुंह बनाए बैठे हैं, उदास बैठे हैं, किसी सोच में गुम हैं, ये उनके लिए और आप सबके लिए, जी आप सबके लिए कि एक बार मुस्कुरा दो, जो होना है वो हो जाएगा। आप किस्सा सोचने से कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कहते मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी सोच लें, जो रब ने लिख दिया लोहे कलम से होना वही है। बस ये यकीन रखें रब पर, अपनी यकीन का पुख्ता रखें, हर काम बेहतर होगा इंशाल्लाह। वक्त 2:03 हो चुके हैं। एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं अजमल खान जो भी आपके साथ मौजूद हूं, आप सबको खुशामदीद। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे दो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है, ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है, जो अश्क है आंखों में, जो अश्क है आंखों में, तस्बीह का वो दाना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई, रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है, और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे दो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। और अब आते हैं जरा कुछ आपके कमेंट्स की जानिब भी, आते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में जनाब इस वक्त सईद भाई हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और कहते हैं जनाब वाह वाह बहुत खूब नाहिद अख्तर गीत, नाहिद सॉन्ग, चलो भाई थैंक यू मच। फिर उसके बाद ज्वाइन किया हमें खुर्रम सलीम ने, कहता अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई कैसे हैं आप, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जजाकल्ला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह से। आपको खुश आमदीद कहते हैं खुर्रम सलीम। और उसके बाद जनाब कहते हैं तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है सनम, तू जो हंसे तो जिंदगी हसीन लगे। क्या बात है भाई, वाह वाह, फुल रोमांटिक मूड है। और उसके बाद फिर खुर्रम सलीम कहते हैं इश्क में हर दर्द भी मीठा लगता है, इश्क में हर दर्द भी मीठा लगता है, तुम मिल जाओ तो जीना अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, खुर्रम सलीम फुल इस वक्त रोमांटिक मूड में भाई। और उसके बाद फिर कहते हैं नो चांद ना चांद चाहिए न सितारे चाहिए, बस तू मिल जाए जिंदगी समर जाए। वाह क्या बात है जी, बहुत बहुत अच्छे। उसके बाद सईद भाई क्या कहते हैं जनाब आपने जो अशार सुनाए बहुत अच्छे थे, ये ठीक है कि
پسند اپنی اپنی، لیکن جو آپ کی پسند ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، غزل میں بھی آپ کی سلیکشن اچھی ہے۔ تھینک یو سعید بھائی، تھینک یو، یہ آپ کی محبت ہے، بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ اور کہتے ہیں اگر ہو سکے تو مسرت نذیر کی غزل ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ جی بالکل، میں نے پاس میرے پاس موجود ہے، بالکل میں بھی سناؤں گا، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، یہ غزل بھی ہم شامل کریں گے ضرور، ٹھیک ہے۔ اور ابھی فی الحال ہم شامل کرتے ہیں حکیم ناصر کا کلام اور آواز عابدہ پروین کی۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا

जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संघ हर शख्स ने, संघ हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। खूबसूरत सी आवाज सूफियाना सिंगर, सूफियाना आवाज है, सूफियाना कलाम आप परवीन और हकीम नासिर साहब का कलाम, फिर इतना खूबसूरत कलाम। वक्त 2:16 हो चुके हैं एफएम मिनट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहूंगा। मैं सईद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मुसर्रत नज़ीर का गाना जो गजल जो है वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल अभी सुनाऊंगा, बेफिक्र रहें। और उसके बाद कहते हैं बगैर फरमाइश के आप अपनी मेरी फरमाइश पूरी कर देते हैं, कर दी आपने आबदा परवीन की ये गजल, मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी आवाज में रिचर्ड रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूंगा, जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह। और फिर देखें जरूर इंशाल्लाह, यहाँ हमारे यहाँ अप्रूवल का होता हुई तो फिर जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर आप रिकॉर्ड करके भेजिएगा। और इसके बाद जनाब खूबसूरत सा कलाम शामिल करते हैं, लतीफ साजिद शायर हैं, शोभदाबाज बताते हुए जल जाते हैं, शोभदाबाज बताते हुए जल जाते हैं, खोटे सिक्के भी तेरी हाथ से चल जाते हैं, खोटे सिक्के भी तेरी हाथ से चल जाते हैं। कच कलाबी कभी एहसास है मैं ख्वारों को, कच कलाही का भी एहसास है मैं ख्वारों को, जबकि गौर से देखे तो समझ जाते हैं, जबकि गौर से देखे तो समझ जाते हैं। रौंदनी पड़ती है पैरों में अना की चादर, रौंदनी पड़ती है पैरों में अना की चादर, सिर्फ चलने से कहां रस्सी के बल जाते हैं, सिर्फ जलने से रस्सी के बल का। और हकीकत ये कि रस्सी के बल कभी भी चलने जलने से नहीं जाते। आप एक जो रस्सी होती है उसको जलाएं, जलाने के बाद देखें जब वो राख भी बन जाएगी, जब तक कि उसको आप हिलाएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, वो राख फैलेगी नहीं, वरना वो ऐसी ही रहेगी, बिल्कुल रस्सी ही जल के वैसी की वैसी रहेगी, जब तक कि उसको हिलाएंगे नहीं, जब तक वो राख फैलेगी नहीं। इसीलिए कि रौंदनी पड़ती है पैरों में अना की चादर, सिर्फ जलने से कहां रस्सी के बल जाते हैं। पारसा लोग हैं मैखाने से घर जाते हुए, पारसा लोग हैं मैखाने से घर जाते हुए, अपनी कालक भी किसी और पे मल जाते हैं, अपनी कालक भी किसी और पे मल जाते हैं। गालियां चीखो पुकार और न जाने क्या क्या, गालियां चीखो पुकार और न जाने क्या क्या, तेरे हंसने से कई हाथ से टल जाते हैं, तेरे हंसने से कई हाथ से चल जाते हैं। भूख बेवाओं की वहशत से भी मिट जाती है, भूख बेवाओं की वहशत से भी मिट जाती है। डर नहीं बचे यतीमे भी पल जाते हैं, डर नहीं बच्चे यतीमे में भी पल जाते हैं। हुस्न वाले भी हैं आवारा परिंदे साजिद, हुस्न वाले भी हैं आवारा परिंदे साजिद, उंगलियां खोले तो हाथों से निकल जाते हैं, उंगलियां खोले तो हाथों से निकल जाते हैं। रौंदनी पड़ती है पैरों में अना की चादर, रौंदनी पड़ती है पैरों में अना की चादर, सिर्फ जलने से कहां रस्सी के बल जाते हैं। एक और खूबसूरत सा कलाम शामिल करते हैं, अगर होती इतनी सी भी बेवफाई हमारी फितरत में, अगर होती इतनी सी भी बेवफाई हमारी फितरत में, तो हम यूं सरेआम एहराम इश्क बांधकर ना घूमते, अगर होती इतनी सी भी बेवफाई हमारी फितरत में, तो हम यूं सरेआम एहराम इश्क बांधकर ना फिरते,
نظر میں تھی ہماری اوروں کی بھی راہیں بہت، نظر میں تھی ہماری اوروں کی بھی راہیں بہت، یہ عاشقی نہ ہوتی تو یہ تیری راہ میں بھی نہ جیتے، یہ عاشقی نہ ہوتی تو یوں تیری راہ میں بھی نہ جیتے۔ عشق ہی تھا جو ہم نادان بن کر تجھ سے کر بیٹھے، عشق ہی تھا جو ہم نادان بن کر تجھ سے کر بیٹھے، تیری دیدار کو ترستے تھے ورنہ یہ نظریں تجھ پہ بھی نہ ڈالتے، تیرے دیدار کو ترستے ورنہ یہ نظریں تجھ پہ نہیں ڈالتے۔ وابستہ تھی اس کمبخت دل کی راحت تجھ سے، وابستہ تھی اس کمبخت دل کی راحت تجھ سے، چین نصیب ہوتا تو تیری نگاہوں میں سکون تلاشنا کرتے، یوں تو توڑ دیا تو نے سلمہ کا دل کئی مرتبہ، وعدوں کے پکے تھے ورنہ کبھی بھی تیرا انتظار نہ کرتے۔ اور جناب اب یوں کرتے کہ شامل کرتے ہیں مسرت نذیر کی آواز، اپنے وقت کی خوبصورت غزل، خوبصورت ٹریک اور خوبصورت آواز۔

Ik hoop zo dat Greg aan zijn nazar. En wacht, 2:38 minuten hoort je kijken. En het was een wacht hebben. Aten een kutje aan de comments kijanip. En Said bhai, thank you very much. Aan Mauju, to mijn zaad. Samreen Baloch, aan mijn zaad Mauju. Samreen, thank you very much. Kap, aan dhiri dhiri. आप शायरी को हमको सुनने लगे हैं, शायरी आपको समझ आने लगी है, बड़ी बात है ये. थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा साथ देती हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. और अब आते हैं एक खूबसूरत कलाम की जानिब, और इसके शायर हैं आबी मखनवी साहब. जी हाँ, आबी मखनवी साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, काफी अच्छा हो गया, नाइट शो में हमारे आए थे, कैरियर काउंसलर भी हैं, टीचर भी हैं, माशाल्लाह बहुत कुछ है, माशाल्लाह शायर भी हैं, साहिब किताब भी हैं. कहते हैं कि चमन की ये फिजा महकी सुहानी छोड़ जाऊंगा, चमन की ये फिजा महकी सुहानी छोड़ जाऊंगा, नई दुनिया बसाकर मैं पुरानी छोड़ जाऊंगा. चमन की ये फिजा महकी सुहानी छोड़ जाऊंगा, नई दुनिया बसाकर मैं पुरानी छोड़ जाऊंगा. दबोकर उंगलियां खून में वफा का बाब लिखूंगा, दबोकर उंगलियां खून में वफा का बाब लिखूंगा, मैं लफ्जों की दमकती रूह फशानी छोड़ जाऊंगा, मैं लफ्जों की दमकती जूफिशानी छोड़ जाऊंगा. बुरा था या भला था मैं ये तय भी लोग कर लेंगे, बुरा था या भला था मैं ये तय भी लोग कर लेंगे, हकीकत के लिबादे में कहानी छोड़ जाऊंगा, हकीकत के लिबादे में कहानी छोड़ जाऊंगा. जमी पर इन खुदाओं का सुकून बर्बाद करने को, जमी पर इन खुदाओं का सुकून बर्बाद करने को, कोई तूफान पालूंगा रवानी छोड़ जाऊंगा, कोई तूफान पालूंगा रवानी छोड़ जाऊंगा. वो खुश है आज बस्ती में कोई शोला नहीं बाकी, वो खुश है आज बस्ती में कोई शोला नहीं बाकी, मैं बच्चों के कबीले में जवानी छोड़ जाऊंगा, मैं बच्चों के कबीले में जवानी छोड़ जाऊंगा. उजाला हो ना हो लेकिन यकीनन दार पर आबी, उजाला हो ना हो लेकिन यकीनन दार पर आबी, मैं सर बसर बुलंद अपना निशानी छोड़ जाऊंगा. उजाला हो न हो यकीनन दार पर आबी, मैं सर ये सर बुलंद अपना निशानी छोड़ जाऊंगा. चमन की ये फिजा महकी सुहानी छोड़ जाऊंगा, चमन की ये फिजा महकी सुहानी छोड़ जाऊंगा, नई दुनिया बसाकर मैं पुरानी छोड़ जाऊंगा. दबोकर उंगलियां खून में वफा का बाब लिखूंगा, दबोकर उंगलियां खून में वफा का बाब लिखूंगा, मैं लफ्जों की दमकती जू फिशानी छोड़ जाऊंगा, मैं लफ्जों की दमकती जू फिशानी छोड़ जाऊंगा. बुरा था या भला था मैं ये तय भी लोग कर लेंगे, बुरा था या भला था मैं ये तय भी लोग कर लेंगे, हकीकत के लिबादे में कहानी छोड़ जाऊंगा. जमी पर इन खुदाओं का सकून बर्बाद करने को, जमी पर इन खुदाओं का सकून बर्बाद करने को, कोई तूफान पालूंगा, कोई तूफान पालूंगा रवानी छोड़ जाऊंगा, कोई तूफान पालूंगा रवानी छोड़ जाऊंगा. वो खुश है आज बस्ती में कोई शोला नहीं बाकी, वो खुश हैं आज बस्ती में कोई शोला नहीं बाकी,
میں بچوں کے قبیلے میں جوانی چھوڑ جاؤں گا، میں بچوں کے قبیلے میں جوانی چھوڑ جاؤں گا۔ اجالا ہو نہ ہو لیکن یقیناً دار پر آبی، اجالا ہو نہ ہو لیکن یقیناً دار پر آبی۔ میں سر یہ سر بلند اپنا، میں سر یہ سر بلند اپنا نشانی چھوڑ جاؤں گا۔ نئی دنیا بسا کر میں پرانی چھوڑ جاؤں گا، میں لفظوں کی دمکتی زو فشانی چھوڑ جاؤں گا، حقیقت کے لبادے میں کہانی چھوڑ جاؤں گا، کوئی طوفان پالوں گا روانی چھوڑ جاؤں گا، میں بچوں کے قبیلے میں جوانی چھوڑ جاؤں گا۔ نئی دنیا بسا کر، نئی دنیا بسا کر پرانی چھوڑ جاؤں گا۔

मेरा शौक है मैं गजल कहूँ। शमशेर अली की आवाज़ बड़ी खूबसूरत सी है शमशेर अली की, और शमशेर अली अपने वक्त की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़, बड़े खूबसूरत गजल के गायक थे। आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, बड़े अच्छे दोस्तों में थे हमारे। डूब कर भी ना पड़ा फराक गिरा जानी में, डूब कर भी ना पड़ा फराक गिरा जानी में, मैं हूं पत्थर की तरह बहते हुए पानी में। ये मोहब्बत तो बहुत बात का किस्सा है मियां, ये मोहब्बत तो बहुत बात का किस्सा है मियां। मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में, मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में, रफ्तगां तुमने अबस ढोंग रचाया वरना, रफ्तगां तुमने अबस ढोंग रचाया वरना। इश्क को दखल नहीं मौत की अरजानी में, रफ्तगां तुमने अबस ढोंग रचाया वरना। इश्क को दखल नहीं मौत की अरजानी में, ये मोहब्बत भी विलायत की तरह रखती है, ये मोहब्बत भी विलायत की तरह रखती है। हालत हाल में ये हालत हैरानी में, हालत हाल में ये हालत हैरानी में, इसलिए जल के कभी राख नहीं होता दिल, इसलिए जल के कभी राख नहीं होता दिल। ये भी ये कभी आग में होता है तो कभी पानी में, ये कभी आग में होता है कभी पानी में। एक मोहब्बत ही पे मौकूफ नहीं ताबिश, एक मोहब्बत ही पे मौकूफ नहीं ताबिश, कुछ बड़े फैसले हो जाते हैं नादानी में। डूब कर भी ना पड़ा फर्क गिरा जानी में, मैं हूं पत्थर की तरह बहते हुए पानी में। ये मोहब्बत तो बहुत बात का किस्सा है मियां, ये मोहब्बत तो बहुत बात का किस्सा है मियां। मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में। यह खूबसूरत कलाम अब्बास ताबिश साहब, अदब की दुनिया का एक बड़ा जाना पहचाना।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।